0: सन्तोष तामाङ झन्डेबी नगरपालिकाका मान्य हो।
1: फुल्यो बारी माला भाजी छोरा खुला।

0: एवं एवं एवं समस्त कार्यक्रम रिक्वेस्ट टाइम प्रायोजक परिवार एवं एवं समस्त कार्यक्रम रिक्वेस्ट टाइम प्रायोजक परिवार गरिसके त नि रोकिसक्यो यहाँ थिचेर ए बा किन देऊ न भेट भेटे
1: ए बा किन देऊ न भट भटे
0: फेटा टुपल्ले नि जाने खाए कसरी चाहिँ ट्राई गरौँ त
2: तानेको छ होला खै के गर्नु
0: एवं समस्त रिक्वेस्ट टाइम परिवार होइन त छोटो एवं समस्त कार्यक्रम

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 6 PM
3: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: प्रत्येक लोक
1: र
0: ठुल्दाई श्रीराम दाहाल चैनपुर नगरपालिका 11 लोहाकोट संखुवा सभा
2: एवं समस्त कार्यक्रम लोक चौतारी प्रायोजक परिवार
0: एवं समस्त कार्यक्रम लोक चौतारी प्रायोजक परिवार

0: हेलो हेलो हेलो दुःख दुःख कष्ट हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, दुःख दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, दुःख कष्ट दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। हेलो हेलो दुःख कष्ट दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, दुःख कष्ट दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, दुःख कष्ट दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। दुःख कष्ट दुःख दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं, दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं। दुःख दुःख कष्ट दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। दुःख कष्ट दुःख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं।
1: नेपाली चैतनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। दुख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं। नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। दुख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं। नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। दुख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं। नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरेर आयो बडा दशैं। दुख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं।
2: बडा दशैं तिहार तथा छठ पर्व 2083 सालको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा छठ गर्दछौ।
3: ठुल्दै श्रीराम दाहाल, श्रीमती संगीता कार्की
4: दुख कष्ट हरेर आयो बडा दशैं, मनमा खुसी छरेर आयो बडा दशैं।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 9 PM
4: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: छरिरह्यो बडा दशैं, मनमा खुशी छरिरह्यो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबै दुःख कष्ट हरिरह्यो बडा दशैं, मनमा दुःख दुख दुख दुख कष्ट हरिरह्यो बडा दशैं, मनमा खुशी पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरिरह्यो दुख कष्ट हरिरह्यो बडा दशैं, कष्ट हरिरह्यो बडा दशैं, मनमा खुशी छरिरह्यो बडा दशैं, नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरिरह्यो बडा दशैं।
1: बडा दशैं तिहार तथा छठ पर्व, बडा दशैं तिहार तथा छठ
0: नेपाली जनको महान पर्व सबैले मनाऊ, उमङ्गपन भरिरह्यो बडा।

भाई राजेन्द्र दाहाल, बुहारी सुशीला दाहाल, भतिजा प्रज्वल र युकेश दाहाल लगायत सम्पूर्ण दाहाल परिवार चैनपुर नगरपालिका 11 लुहाकोट संघवास।

0: चार शंखुआ सब साथीहरू छविलाल राई पहौले साइला सम्पूर्ण छविलाल राई पहौले साइला सम्पूर्ण नगरपालिका नौ किराँत छविलाल राई पहौले साइला सम्पूर्ण नगरपालिका नौ किराँत चौक भित्रे शंखुआ सभा
1: सपना सासंखर मादी नगरपालिका चार देवढुङ्गा शंखुआ सभा
0: जीवन फावेल सभा पोखरी गाउँपालिका चार शंखुआ सभा हाल मलेसिया
1: युनिसा तामाङ धर्मदेवी नगरपालिका चार मामलिङ शंखुआ सभा
0: निशान योङहाङ मङ्सेबुङ गाउँपालिका तीन इलाम
1: ठुल्दाई श्रीराम दाहाल चैनपुर नगरपालिका एघार लोहाकोट शंखुआ सभा
0: राज बिरही काइला सुरज राई
1: पुङखिम चैनपुर नगरपालिका दस खरान शंखुआ सभा
0: भोजपुर भोजपुर हाल मलेसिया
1: र सुमिता याखा लिम्बुखिम चैनपुर नगरपालिका दस खरान शंखुआ सभा

आदरणीय श्रेष्ठ भोजपुर र सुमिता याखा लिम्बुखिम चैनपुर नगरपालिका 10 खराङ संखुवा सभा एवं समस्त कार्यक्रम शुभ सन्देश प्राय

0: रेडियो अरुण 97.6 MHz हर पल तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।